0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे सौरव मायती। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम के समापन अंश में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नमिता भट्टाचार्य का गाया ये श्यामा संगीत। तो आइए सुनते हैं ये श्यामा संगीत, कलाकार नमिता भट्टाचार्य।
1: You were listening to Shyama Sangeet. Our artist was Saurav Maiti. Concluding the program, we now present Shyama Sangeet. Our artist is Namita Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी नमिता भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज नमिता भट्टाचार्य। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: You are listening to vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on tabla by Shri Uday Kulkarni and harmonium by Shri Shrikant Kulkarni. Continuing the concert, now listen to tabla solo by Pandit Raghunath Nakod. Taal, teen taal.
1: आप सुन रहे थे श्री कुमार मडूर का गायन. आपके साथ तबले पर श्री उदय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री श्रीकांत कुलकर्णी साथ दे रहे थे. कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित रघुनाथ नाकोड़ का तबला सोलो. ताल तीन ताल.

0: You were listening to Tabla Solo by Pandit Raghunath Nakod. He was accompanied on violin by Sri Shankar Kabadi. This program was contributed by Akashwani Dharwad, Anytime Indian Music.
1: अब तक आप सुन रहे थे पंडित रघुनाथ नाकोड का तबला सोलो. आपके साथ वायलिन पर श्री शंकर कबाड़ी साथ दे रहे थे. यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा पेश किया गया.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग सिंधु भैरवी में सितार वादन. आज के हमारे कलाकार हैं पंडित देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय. तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित संजय मुखोपाध्याय. तो आइए सुनते हैं राग सिंधु भैरवी में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल followed by a Hindustani vocal recital. Listen to a sitar recital in the rag Sindhu Bhairavi. Our artist is Pandit Devaprasad Chatterjee. Accompanying our artist on the tabla is Pandit Sanjoy Mukherjee. Listen now to the sitar in the rag Sindhu Bhairavi. Our artist, Pandit Devaprasad Chatterjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग सिंधु भैरवी में सितार वादन। कलाकार थे पंडित देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित संजय मुखोपाध्याय। ये है रागम, 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मंगल भैरव में ख्याल। कलाकार हैं सीमा भट्टाचार्य। तबले पर संगत कर रहे हैं समीर आचार्य। हारमोनियम पर आपका साथ निभा रहे हैं रतन नट्टो। तो आइए सुनते हैं राग मंगल भैरव में ख्याल। कलाकार हैं सीमा भट्टाचार्य।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Sindhu Bhairavi. Our artist was Pandit Devaprasad Chatterjee. Accompanying our artist on the tabla was Pandit Shonjoy Mukherjee. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a khayal. Listen to khayal in the rag Mangal Bhairav. Our artist is Seema Bhattacharya. Accompanying her on the tabla is Samir Acharya and on the harmonium is Ratan Notto. Listen now to a khayal in the rag Mangal Bhairav. Our artist, Seema Bhattacharya.

Sa re ga ma pa ma ga ma ba da ba da ma.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग मंगल भैरव में ख्याल। कलाकार थी सीमा भट्टाचार्य। तबले पर संगत कर रहे थे समीर आचार्य। हारमोनियम पर आपका साथ निभा रहे थे रतन नट्टो। यह हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओ, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम, 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. प्रस्तुत है उपशास्त्रीय गायन, कलाकार है पंडित छोटा गंधर्व. आइए इस कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व का गाया हुआ दादरा, जो बन मद भरी चली नहीं ऐसी नार सज के आई. आपके साथ हारमोनियम पर है बाल माटे, तबले पर विठल क्षीरसागर और वायलिन पर फैयाज हुसैन. सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व का गाया हुआ दादरा.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व का गाया हुआ दादरा। आपके साथ हारमोनियम पर थे बाल माटे, तबले पर थे विठल क्षीरसागर और वायलिन पर फैयाज हुसैन। इसके बाद आइए सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व की गाई हुई ठुमरी बिन बादल बिजुरी कहाँ चमके। हारमोनियम पर है संजय देशपांडे, तबले पर विनायक थोरात और वायलिन पर फैयाज हुसैन। पंडित छोटा गंधर्व की गाई हुई ठुमरी बिन बादल बिजुरी कहाँ चमके।

हम सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व की गाई हुई ठुमरी। हारमोनियम पर थे संजय देशपांडे, तबले पर थे विनायक थोरात और वायलिन पर फैयाज हुसैन। इसके बाद आइए सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व के स्वर में दादरा,

मोरे राजा कीवड़िया खोलो रसके बूंदा न पड़े। आपके साथ हारमोनियम पर है श्री राम शाहपुरकर, तबले पर चंद्रकांत कामत और वायलिन पर फैयाज हुसैन। सुनते हैं दादरा, कलाकार पंडित छोटा गंधर्व।

हम अभी सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व का गाया हुआ धाधरा। आइए इसके बाद अब सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व की गाई हुई ठुमरी कहेरी ननदिया मारे बोल। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री राम शाहपुरकर, तबले पर है चंद्रकांत कामत और वायलिन पर है फैयाज हुसैन।

उपशास्त्रीय गायन के कार्यक्रम में हम सुन रहे थे ठुमरी, कलाकार थे पंडित छोटा गंधर्व। आपके साथ हारमोनियम पर थे श्रीराम शाहपुरकर, तबले पर थे चंद्रकांत कामत और वायलिन पर थे फैयाज हुसैन। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाल मनाए, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manai. This will be followed by a composition in Drut Khayal set to Tintal. The lyrics of this composition are Allai Jane Allai Jane.

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल, इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एकताल। द लिरिक्स आर दैया कहाँ गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अलहिया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अलहिया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. This was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं त्र्यंबकराव जानोरीकर का गायन। आपने प्रस्तुत किया है राग बैरागी भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, ख्याल के बोल है अब कर्म कीजे। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है सुरस सुरस साधले। आपको सारंगी पर संगति कर रहे हैं मधुकर खाडिलकर और तबले पर संगति कर रहे हैं सूर्यकांत गोखले। आइए सुनते हैं त्र्यंबकराव जानोरीकर का गाया हुआ राग बैरागी भैरव।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे त्र्यंबकराव जानोरीकर का गायन, राग था बैरागी भैरव। आपको सारंगी पर संगति कर रहे थे मधुकर खाडिलकर और तबले पर संगति कर रहे थे सूर्यकांत गोखले। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं मास्टर कृष्णराव का गायन, राग तोड़ी। विलंबित ख्याल 3 ताल में निबद्ध है। ख्याल के बोल है बाजो रे मोहम्मद सा। द्रुत ख्याल 3 ताल में निबद्ध है। ख्याल के बोल है बरसत रस तौर मांगत हूँ। आपको सारंगी पर साथ कर रहे हैं मधुकर खाडिलकर और तबले पर है चंद्रकांत कामत। सुनते हैं राग तोड़ी, कलाकार मास्टर कृष्णराव।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मास्टर कृष्णराव का गाया हुआ राग तोड़ी। आपको सारंगी पर संगति कर रहे थे मधुकर खाडिलकर और तबले पर संगति कर रहे थे चंद्रकांत कामत। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

Mama,

ಪ್ರದಾಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯ ಪರಮ ಪೂಜಾಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯ ಪರಮ ಪೂಜಾಯ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ठुमरी और दादरा. आज के कलाकार हैं निवेदिता बंदोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नाड़ गोपाल पात्रो और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो. निवेदिता बंदोपाध्याय अपने गायन का आरंभ राग मिश्र विभाग में एक ठुमरी से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं ये ठुमरी. कलाकार निवेदिता बंदोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a Mishra Bihag Thumri followed by a Gara Dadra. Our artist is Nibedita Banerjee. Accompanying our artist on the tabla is Naru Gopal Patro, and on the harmonium is Ratan Notto. Listen now to a Mishra Bihag Thumri followed by a Gara Dadra. Our artist, Nibedita Banerjee.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिश्र विभाग में ये ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी निवेदिता बंदोपाध्याय। निवेदिता बंदोपाध्याय अपने गायन का समापन गरा दादरा से कर रही हैं। तो ये सुनते हैं ये गरा दादरा, कलाकार निवेदिता बंदोपाध्याय।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये गरा दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी निवेदिता बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे नाडु गोपाल पात्रो और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंचम सवारी ताल में तबला वादन। कलाकार हैं विभास संघाई। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो। तो लीजिए प्रस्तुत है पंचम सवारी ताल में तबला वादन, कलाकार विभास संघाई।
1: You were listening to a Mishra Bihag Thumri followed by a Gara Dadra. Our artist was Nibedita Banerjee. Accompanying our artist on the tabla was Naru Gopal Patro and on the harmonium was Ratan Notto. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to the tabla in Pancham Savari Tal. Our artist is Bibhash Sanghai. Accompanying him on the harmonium is Ratan Notto. Listen now to the tabla in Pancham Savari Tal. Our artist is Bibhash Sanghai.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप पंचम सवारी ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे विभा संघाई। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन अट्टो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to the tabla in Pancham Savari Tal. Our artist was Bivash Sanghai. Accompanying him on the harmonium was Ratan Notto. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

Galinina. Ah!

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा. राग है बसंत मुखारी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ झाला तत्पश्चात दो गतें. विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुत गत। विलंबित गत झप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है सुषमा वाजपेयी का गाया शास्त्रीय गायन. सबसे पहले आप प्रस्तुत करेंगी राग भटियार में ख्याल. विलंबित के बोल है उचक गई नींद मोरी बलमा, जो कि एक ताल में निबद्ध है, और द्रुत के बोल है माता महाकाली, जो कि एक ताल में निबद्ध है. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र और तबले पर संगत कर रहे हैं निशांत कुमार सिंह. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट क्लासिकल सिंगिंग बाय सुषमा वाजपेयी. शी इज प्रेजेंटिंग राग भटियार. विलंबित कॉम्पोजिशन इज उचट गई नींद मोरी बलमा, सेट टू एकताल. द्रुत कॉम्पोजिशन इज माता महाकाली, सेट टू एकताल. एकॉम्पनिंग हर ऑन सारंगी विनोद कुमार मिश्र एंड ऑन तबला निशांत कुमार सिंह.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अने भरत भारती संगीत। अभी आप सुन रहे थे सुषमा वाजपेयी का गाया राग भटियार। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग अहिर भैरव में ख्याल। विलंबित के बोल है अलसाने ए लालन रे संग जागे, जो कि एक ताल में निबद्ध है। द्रुत के बोल है आई बसंत की ऋतु आली, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ सारंगी पर संगति दे रहे हैं विनोद कुमार मिश्र और तबले पर संगति कर रहे हैं निशांत कुमार सिंह। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू जस्ट हर्ड राग भटियार बाय सुषमा वाजपेयी। नाउ शी विल प्रेजेंट राग अहिर भैरव। विलंबित कॉम्पोजिशन इज अलसाने ये लालन रे संग जागे इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज आई बसंत की ऋतु आली इज सेट टू तीन ताल। अकॉम्पनिंग हर ऑन सारंगी विनोद कुमार मिश्र एंड ऑन तबला निशांत कुमार सिंह।

अभी आप सुन रहे थे राग अहीर भैरव। यू जस्ट हर्ड सुषमा वाजपेयी इन राग अहीर भैरव। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे सुषमा वाजपेयी का गाया राग मधुकौस। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग राग मधुकौस बाई सुषमा वाजपेयी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है इरा मुखर्जी का गाया राग भैरव. झपताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं गव आदि. पखावज पर आपकी संगति की है ऋषि शंकर उपाध्याय ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ ब्रिंग यू अ वोकल ध्रुपद रिसाइटल बाय इरा मुखर्जी. शी बिगिंस हर रिसाइटल विद राग भैरव. द ध्रुपद इज सेट टू झपताल एंड द वर्ड्स आर गव आदि. She is accompanied on the Pakhavaj by Rishi Shankar Upadhyay and on the Sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami.

0: और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग तोड़ी। पखावज पर आपकी संगति की है ऋषि शंकर उपाध्याय ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू जस्ट हर्ड इरा मुखर्जी परफॉर्मिंग राग भैरव। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द पखावज बाय ऋषि शंकर उपाध्याय एंड ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी। इरा मुखर्जी कंटिन्यूज हर ध्रुपद रिसाइटल विद द प्रेजेंटेशन इन राग तोड़ी।

0: अभी आप इरा मुखर्जी का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी ऋषि शंकर उपाध्याय ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड अ वोकल ध्रुपद रिसाइटल बाय इरा मुखर्जी इन राग तोड़ी। शी वॉज अकंपनीड ऑन द पखावज बाय ऋषि शंकर उपाध्याय एंड ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शंकर घाणेकर की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है गजानन वाटवे और सहकारियों ने, स्वरबद्ध किया है राम पेठे ने।

अभी आपने शंकर घाणे ने लिखी गजानन वाटवे और सहकारियों के स्वर में ये भक्ति रचना सुनी, जिसे संगीतबद्ध किया था राम पेठे ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं महादेव बुआ शाहबाजकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी महादेव बुआ शाहबाजकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना कालिंदी साठे के स्वर में।

कालिंदी साठे के स्वर में संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं ऋषिकेश बोड़स और मंगला जोशी के स्वर में।

ऋषिकेश बोड़स और मंगला जोशी ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पद्माकर थत्ते के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी पद्माकर थत्ते के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना सरोज गोखले के स्वर में।

सरोज गोखले ने गाई संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं वीणा भक्ति मंडल ने गाई ये भक्ति रचना।